दिशा बिन से पाप घनेरे पैसे पारे मगे कोई तारे वायर पैसे पारे मगे कोई तारे वायर।

सब तेरा जियो मेंडे सब तेरा सचिया बादशाह जियो मेंडे सब तेरा कहुना नकेस

दिल्ली में शीश गंध रकाबगंज बाला साहेब मंगला साहेब सतो चंडिया साहेब दी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बलार

से चन प्रताप ते देवन बड़े ओ प्रताप तीन लोक जय जय करे रे नाम सत्याप दोहरा सकल द्वार को छाड़ गए द्वार द्वार महंगे की लाज अस गोविंदास द्वार दोहरा राज करेगा खालसा की रहे ना कोई पार होए सब लेंगे बचे शरण जो होए उठ गई सभा मलेच की कर कूड़ा पासार लंका बाजे फतेह का नायक लंके अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं

त्वा प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भू भृत भान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक बिदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब

भेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहूँ कथत ही सो पुराण। कई अग्नहोत्र का अंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द बाहु सन्यास कहूँ जोग भेष उदास कहूँ निवली।

रंक राजकुमार कहूँ वेद व्यास अवतार। कई ब्रह्म वेद रटंत कई शेख नाम उचरंत बैराग कहूँ संन्यास कहूँ फिरत रूप उदास। सब कर

खरी अभे खरी अदु खरी अद्वा खरी अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अजेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तु हि थलस्तु हि नदिस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभतु हि अछूतु हि अछतु हि जतस्तु हि व्रतस्तु हि।

तेज में अतेज जैसे तेज नीन ताई ते उपज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मडी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तप

छह स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न सोकंग न साकंग परे यंग पवित्रं पुनीतंगताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भर्मंग न सर्मंग न साके न भर्मंग न चर्मंग न कर्मंग न बाके न सतरंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो।

कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व के नर कहानि कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ योग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की ऋष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारं कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा।

अनभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनाद आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र ब्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धनम ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न।

तन सेत घाम वरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्द बाह देशन भ्रमंत कई उर्द मद पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र दुचरंत वेद कई कोक काव कथत कते कई अग्न होत्र कई पवन हार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साक पै पत्र बच्छ नई तदब देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगयाद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश बाखा रटंत कई देश देश विद्या पटंत कई करत पांत पांतन विचार नहीं नयक दास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम।

याद करम कहूं हस्त दान कहूं वसुमेध मुख को बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जो गरीद कहूं बिरद चार कहूं करत जच गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ करम कहूं वेद रीत कहूं नृत नाच कहूं गान गीत कहूं करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अघन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदप दास पायतन अंत कई करत कोट पितया विचार नहीं तदप देश देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटु सर्व धर्मा विहीन त्वा प्रसाद तोटक छंद जय जंप जुगण जूह जुअंग भय कंप मेर पयाल भोंग तप तप सर्व जलेर थलंग दन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद भयंगन खंड भूत छेद छ्यंगन काल अपाल दयाल स्वंग जे ठटियंग मेर आकाश भुअंग अनखंड मंड प्रचंड रंग जे रच्यंग देव देव वरंग सब किन्नी दीन जमीन जमा जे रच्यंग सर्व मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जे जात न पात न मात पितंग जे रच्यंग छत्रि छत्र चितंग जे राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जे अंडे ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगेन्द नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपान रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंड से तज उद भुजंग ये देव देव श्राद्ध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे तात न मात न ब्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जे जम्प किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथादिक बांध गणंग भूत भविख भवा

पाए छपाए दिए जे लोग चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूता भूत छूत मतंगन गाद व्याद अनाद गतंगन खेद वेद छेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन कंजन आदि सरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जा छ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत भेद पुराण सभा जय वेद कते अनंत कह जय भूत भूत न भेद लह जे वेद पुराण कते जपै सुत सिंध दो मुख ताप तपै गई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नै कृपा निध पान परै जय फोकट धर्म सब तज है एक चित्त कृपा निध को जप है तेउ याप वसाकर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुति जो वारस के जस के रस है तेउ भूल न काल फंदा फस है त्वा प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिय न राग रंग रूप है न रोग राग रेग है अदोग दाग दग है अभूत भ्रम फेक है न तात मात जात है न पात चिहन वरण है अदेक से कफेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमी जमान के भी कह सदीव करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानिय सदीव सर्वठौर में विशेक अन मानिय न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण औ पुराण नेत नेत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइये गंज आदि देव है कहो सो कह सपाइये जिमी जमान के बिके समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न मान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमान तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न बात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को

अरे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न द्वि है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है वलीय रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है।

दाग है, अच्छे प्रताप देखी है। न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है अगंज।

गजाधपि नराधपि करंत सेवह सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आदि जे बटे तपस्तपे विशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोद है त्व प्रसाद रुआ मल छंद रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाद पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखे बस सब ठौर में निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमे उजे

जैसे किन्नर मछ मारत मुर्गौर का पार, नेत नेत पुकार ही शिव सकरो मुखचार। सर्व सपत पतार के तर जप ही जय जाप, आद देव गाद तेज नाद मूर्त अताप। जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीन। जच गंधर्व देव दानु न ब्रह्म क्षत्रियन माहे, वैसनंग के बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप, रात दिवस न मध्य उर्द न भूमा का सनूप। जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन, तीर्थ जात्रण देव पूजा घोर के न अधीन। सर्व सबद पतार के दर जानिय जय ज्योत, शेष नाम सहंस फन नेत पूरण होत। सोत सोत हटे सब सुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ। पड़त पड़त थके महाकव कटत गाढ़ अनंत, हार हार कहियो सबू मिलना।

रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी आद देवापाल दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार वरण चिहन न चक्र जाको चक्र चिहन आकार जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न वरण सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भूव को वरण दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरक प्रमाद दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर्ता जगत में जयकात भूत भव भवेख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत नाथ श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जेत कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच कछ अपार भूमका जले थले महिमान्य जह नाम दुष्ट हर्ता पुष्ट करता श्रेष्ठ हर्ता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र बालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हुंके काल दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूमका जले तले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पास रिपत दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटेन्द्र उपेन्द्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र मुख चार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय तके सब गुंचक्रत भे मुख चार आद अंत न मध जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीय कल युग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदिक भेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोध सोध थके महासुर पायो नह पार त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सप्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जीतब कह मरण है कवन सुरक कह नरक को सुकड़ा को मूर्ता कहाँ तरक तरक दोहरा को निंदा जस है कवन

कहाँ रंक राजा कवन हरक सुख है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत् मोहि तवंदु हुरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को वृष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा।

लोगन के करता हरता जल मैथल में भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापते है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगे अच्छ है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुमरी सुत सुंदर श्री पद्मा पतल है। रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो बांध बचावे शत्रु ने एक चलावत घावत उतन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर पाप संभोहन भेटन पावे। और की बात कहाँ कह तो सो सो पेट ही के बट बीच बचावे। जछ भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूमा का अस्पताल रसात जछ भुजंग सब सन्यावे। पाए सके नहीं पार प्रवाहू को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हु मिल गायो। वेद गते न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो ते को मन बैजे को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान वेद नृपान सब बचहारे। भेद न पाए सके उन वेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साख न शोक न संग त्यारे। आद न तगाद पेकत वैग जप्यो तिन ही कुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे। देश फिरो कर बेस्त बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख कारे। दीन दयाल काल बजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल हैं। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल हैं। जोध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान हैं। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल हैं। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्याव गोर कर तेज गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधे पौन साधना की तेग बांध अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पश्चिम के पश्चिमी पहचान निज काम है। मरटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या कर देड़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आगे में चलत है। रो के रोहेले माग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शेष न्याय तिपति दयाए दुख देह के दलत है। जिन्हें तो है जायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्वधन धाम फल फूल स्व फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन सादा दीन कहियत है। पाइय न पार देज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहि चिटकी चिंगार पहले ही सुनियत है। कितने इंद्र द्वार कितने ब्रह्मा मुख चार कितने कृष्णा अवतार कितने राम कहियत है। कितने ससुरासी कितने सूरज प्रकाशी कितने मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कितने महाधीन कितने व्यास से प्रवीण कितने कुमेर कुलीन कितने

0: छोटी उम्र गुरु नानक देव साहिब नूं कहा जी ने बड़े ही चाव दे नाल जी ने बड़े ही चाव दे सवेरे जा करके पछतावा नूं सवेरे महाराज जी ने नवां नूं पंद्रह नवां पजा करके उहनां नूं खोलणा अपने हाथी करके उहनां नूं खोलणा ते सारिआं नूं इकट्ठा करके सारिआं जिथे भीड़ करके जंगल ने उथे महाराज जी ने सवेरे उहनां नूं चरमाण लई लै के सवेरे उहनां नूं चरमाण लई पातशाह महाराज जी नीति जांदे सन बड़े ही चाव दे नाल गुरु नानक देव साहिब महाराज अपना नाम है नाम सच्चे पातशाह महाराज चोज कर रहे ने गवां चराए चोज कर रहे ने सब उत्ते भी महाराज जी ने कौतक सो उत्ते भी महाराज जी ने कौतक दे खेतां दे विच गवां वाड़ दित्तियां ते खेतां दे विच गवां पाड़ दित्तियां ओ गवां मच्छा जिहड़ियां ने ओ सारा गवां पुन्ना मिट्टियां ने ओ सारा खेत दे जमींदार किसान ने मुड़ के ओ जमीन जिहड़ी है कि आपी ने साणे मेरी फसल दी खराबी कीती है मेरी फसल दी तुसी मैनूं मिलदा जड़ा है ना तुसी मुंगनाणस दा मटरो खराब की महाराज जी करके
1: महाराज
0: महाराज जी गए जदों पातशाह महाराज जी सात संग जी छड़ा मलानो सात संग जी छड़ा जो अपना जड़ा है जिवें जो उन्होंने पाउणा है जड़ा है ओ बरीक बरीक जी जिहड़ी है कोमल काली जिहड़ी है जिहड़ी है जिद मिलदी है उधर जा के ओ उधर जाके बीयां ने ते महाराज जी ने उन्हां नूं छड़ता महाराज जी आप जी ने वेख्या कि सतना जड़ा है ने रोकिया कि सतना साख दी गल है वैसाक दा महीना है साख दी गल है वैसाक दे महीने तो ना महाराज जी रुक ने महाराज जी रुक जी पा करके चिट्टी चादर अगदा जी पा करके सच्चे पातशाह जी ਆਖੋ।

साहब महाराज जी नूं कौन नहीं गा रहा, सारे ही गा रहे हैं। ऐसी हस्ती सच्चे पातशाह महाराज जी की है जिन्हों साध संगत जी प्रगट कराना चाहते ने उहदे अगे प्रगट कर देंदे ने, जिस तो छुपाउणा चाहते ने उस तो छुपा लेंदे ने, सब उन्हां दे हाथ विच है। सो इत्थे ही साध संगत जी समे की समाप्ति है, अज दे विचारां दी कथा की समाप्ति है। एकणी अनेक प्रकार दीआं गलतियां भुलां चुकां दी खिमा बख्शणा करो साध संगत गुरु साहब, बख्शण जोगे जी बख्श लैणा। अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के समाप्ति।

जात में है जोत जोत में जाता कलकला भरपुर रहा तू सच्चा सा सुख सवालो जिन कीती सो पार पया कहो नानक ते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा सो दर

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईयां। तुद विण सिद्धि कनै न पाईया, करम मिले नाही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दहित सह क्या चारा, नानक सच स्वरण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, सचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिय दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचै नाए रहाओ, सचे नाम की तिल वड्याई। आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे। वडा ना होवै घाट ना जाए,

कहा चाओ पई सम सतर सैस भणी जय अर्ध सैस भुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा।

करो। जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरों दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर बासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया। धन जियो तह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जुद विचारे। दे

छोरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत, स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। चौपाई जो ए कथा सुने अर गावे, दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए फल होई, आद ब्याज छ सकै न कोई। सम सत्रह सैस पचावन, हाड वधी प्रथम सुखदावन। तौ प्रसाद कर ग्रंथ।

तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुम रे तब तिकू आख तर नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुम री कर मना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सकल द्वार को छाड़ कह गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद।

0: चतुर्चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासि
1: दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते देखते गुप्त अनुसृत अजान गुरु गोबिंद सिंह जी श्री अकाल पुरख जी सहाय दरबार में तेरो दरबारा

कै कृपानी एत श्री बचित नाटक चंडी चरित्रे देवी जुकी उस्त समाप्त वर्णन नाम सप्तमो ध्याय संपूर्ण मास शुभ मस्त अफ ज्यो अथ चंडी चरित उस्तत वर्णन भुजंग प्रयात छंद भरे जोगुणी पत्र चौसठ चारंग चली ठाम ठाम डकारंग डकारंग परे ने गे हंग गए कंक बंगंग रुले सुर बीरंग आहाड़ नृसंगन चले नारद हाथ बीना सुहाए बने बार जी डंक डौरू बजाए गिरे बाज गाजी गजी बीर खेतंग रुले तछ मुछंग नचे प्रभुत प्रेतंग नचे बीर बैताल अधन कबधंग बदे बद गुपा गुलित राण बधंग पय सात शंभू पीतंग पीते नमो लोक माता भले लो सत्र जीते पड़े मूड़ या को तनंग ताम बाडे सुनै सूम सोफी लरै जुद गाढ़ है जगै रैन जोगी जपै जाप या को तरै परम जोग अंग लह सिद्धता को पढ़ याह विद्यार्थी विद्य हेतंग लह सर्व शास्त्रान को मद चेतंग जपै जोग संन्यास बैराग कोई तिसै सर्व पुन्यान को पुन होई दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत इत श्री बचे तर नाटके चंडी चरित्रे चंडी चरित उस्तत वर्णन नाम अष्टमो त्याय संपूर्ण मास शुभ मस्त अफ ज्यो एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख

कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे अशेदंग पेदंग अखेदंग अनूपे नमो लोक लोकेश्वरंग लोकनाथे सदैवंग सदा सर्वसातंग अनाथे नमो एक रूपंग अनेकंग स्वरूपे सदा सर्वसांग सदा सर्वरूपे अशेदंग पेदंग नामंग ठामंग सदा सर्वदा सेदता बुद्धता पंग जंतरंग मंत्रंग कंतरंग परमंग अशेदंग पेदंग अछेदंग अपेदंग अखेदंग अकर्मंग गादे बादे अगंतंग नंदंग लेखंग पेखंग नंतंग महंतंग न रंगंग न रूपंग न जातंग न पातंग न शत्रु न मित्रो न पुत्रो न मातंग अपूतंग अपंगंग अपिखंग पवानंग परेयंग पुनीतंग पवित्रंग प्रधानंग अजय अगंजे अपंजे नामे अनामंग अटकर्मंग अनंते बेअंते अपूमे परमंग नहीं जान जाय कशुरूप रेखंग कहाँ भाषतंग को फिरे कौन पेखंग कहाँ नाम तंको कहाँ कह कहा वै कहाँ मैं बखानो कहे मुना आवै अजोनी अजय परम रूपी प्रधान है अशेदी अपै अशेदी अपेदी अरूपी महान है असाधे गाधे गंजुल रही में अंजगंजुल राधे राकुल रही में सदा सर्वदा सिद्धदा बुद्धदाता नमो लोक लोकेश्वरंग लोक ज्ञाता अशेदी अपै आद रूपी अनंतंग अशेदी अशय आद अद्वै दुरंग तंग निराशंता अनंत आद देव है बेअंत परम पेव है गाद ब्याद नाश है सदैव सर्व पास है बचित्र चित्र चाप है खंड दुष्ट खाप है भेद आद काल है सदैव सर्व दयाल सदैव सर्व बाल है खंड चंड स्वरूप है प्रचंड सर्व स्वरूप है काल हुंके काल है सदैव रच बाल है कृपाल दयाल रूप है सदैव सर्व रूप है अनंत सर्व आस है परे परम प्रास है अदृष्ट अंदर ध्यान है सदैव सर्वमान है कृपाल कालहीन है सदैव सद अधीन है पजस्तवंग पजस्तवंग रहाव अगाध व्याध नासरंग परेंग परम उपासरंग त्रिकाल लोकमान है सदैव पुरुष प्रधान है तथास्तवंग तथास्तवंग रहाव कृपाल दयाल कर्म है गंज पांच परम है त्रिकाल लोकपाल है सदैव सर्व दयाल है जपास्तवंग जपास्तवंग रहाव महान मोन मान है परे परम प्रधान है पुराण प्रेत नासंग सदैव सर्वपासंग प्रचंड अखंड मंडली उदंड राज सुथली जगंत ज्योत ज्वालका जलंत दीप मालका कृपाल दयाल लोचनंग मचंग बाण मोचनंग सरंगरीट धारियंग दिनेश कृत हारियंग विशाल लाल लोचनंग मनोज मान मोचनंग सुभंत शीश सोप्रभा चक्रंत चार चंद्रका जगंत ज्योत ज्वालका छकंत राज सोप्रभा जगंत ज्योत जैत सी बदंत कृत ईश्वरी त्रिभंगी शंता प्रसाद अनकात स्वरूपंग अमित विभूतंग अचल स्वरूपंग विस्करणंग जग ज्योत प्रकाशंग आद अनासंग अमित अगासंग सर्व परणंग अनगंज अकालंग विस्पृत पालंग दीन दयालंग शुभ करणंग आनंद स्वरूपंग अनहद रूपंग अमित विभूतंग तव शरणंग विश्वंबर परणंग जगत प्रकरण करण अधरण धरण श्रेष्ठ करंग अनंत स्वरूपी अनहद रूपी अमित विभूति तेज वरंग अनखंड प्रतापंग सब जगतापंग अलख तापंग वेश करंग अद्वै अविनाशी तेज प्रकाशी सर्व उदासी एक हरंग अनखंड अमंडंग तेज प्रचंडंग ज्योत उडंदन अमित मितंग अनभय अनगादंग अलख अबादंग विश्व प्रसादंग अमित गतंग आनंद स्वरूपी अनहद रूपी अचल विभूति ता भाव तरणंग अनगाध अबादंग जगत प्रसादंग सर्व राधंग तव शरणंग अकलंक अबादंग विश्व प्रसादंग जगत अराधंग भवनासंग विश्वंभर परणंग किलविक हरणंग पतित उदारणंग सर्वसाथंग नाथ नाथे अकृत अगाथे अमित अनाथे दुख हरणंग आगंज अविनाशी ज्योत प्रकाशी जगत प्रनाशी तोय शरण कलस अमितेज जग ज्योत प्रकाशी आद अछेद अपय विनाशी परम तत् परमार्थ प्रकाशी आद स्वरूप अखंड उदासी त्रिभंगी छंद अखंड उदासी परम प्रकाशी आद अनासी विश्व करंग जगतावल करता जगत प्रहरता सब जग भरता सिद्ध परंग अचय अविनाशी तेज प्रकाशी रूप सुरासी सर्वसिदंग आनंद स्वरूपी अनहद रूपी अखल विभूति अमित गतंग कलस आद अभय अनगाद स्वरूपंग राग रंग जय रूपना रेखांग रंग पयो रावत कहूँ पूपंग कहूँ समुद्र सरता कहूँ पूपंग त्रिपंगी शांद सरता कहूँ कूपंग समुद्र स्वरूपंग अलग विभूतंग अमित गतंग अद्वै अविनाशी परम प्रकाशी तेज सुरासी अकृतकृतंग जय रूपना रेखंग लख अपेखंग अमित अद्वैखंग सर्वमयी सब किलविक हरणंग पतित उदाहरणंग असरण शरणंग एक दई कलस आजान भाव सारंग करतारणंग अमित ज्योत
जग जोत प्रकारणंग खड़क पान खल दल बल हरणंग माह भाव विश्वंबर प्रण त्रिपंगी शानदा खल दल बल हरणंग दोष्ट बिडारणंग असरण शरणंग अमित गतंग चंचल चक चारण मछ बिडारण पाप प्रहारण अमित मतंग आ जान सुबाहंग शान शाहंग महिमा माहंग सर्वमयी जल थल बन रता बन त्रेन कहता खल दल दहता सुन ऋषि कलस अत बलिष्ठ दल दुष्ट निकंदन अमित प्रताप सगल जग बंदन सुहत चार चित्र कर चंदन पाप प्रहारण दुष्ट दल दंडन छपै छंद वेद भेद नहीं लखे ब्रह्म ब्रह्मा नहीं बुझे व्यास परासर सुख सनाद शिव अंत न सुजै सनत कुवार सनकाद सर्व जव समाना पावे लख लखमी लख बिशन किशन कई नेत बतावे है सांब रूप अनभय प्रभा अत बलिष्ठ जल थल करण अचुत अनंत अतवय अमित नाथ निरंजन तव शरण अच्युत अभय अपेद अमित अखंड अतुल बल अटल अनंत नाद अखय अखंड प्रबल दल अमित अमित अनतोल अपू अनभेद अपंजन अनभिकार आत्म स्वरूप सुरनर मुन रंजन अभिकार रूप अनभय सदा मोन जन गान बंदर चरण पाव भरण करण दुख दोख हरण अत प्रताप भ्रम पै हरण छपै छंद तव प्रसाद मुख मंडल पर लसत जोत उदोत अमित गत जतट जोग जगमगत लजत लख कोट निखत पत चक्रवर्ती चक्र वै चक्रत चौ चक्र करत हर पद्मनाथ पद्माच्छ नवल नारायण नर हर कालक बिहंडन किलविक हरण सुरनर मुन बंदत चरण खंडन अखंड मंडन अभय नमो नाद पवपय हरण छपय छंद नमो नाथ निद्राधक नमो निम रूप निरंजन गंजन अगंजन अपांज अनपेद अपंजन अक्षय अखय अभिकार अभय अनपेज अपेदन खेदान खेदन अखेज अनक्षेत्र अछेदन आ जान बा सारंग सारंग तार खड़क पान दुर्जन दलन नरवर नरेश नायक नृपण नमो नवल जल थल रवन दीन दयाल दुख हरण दुर्मत हंता दुख खंडन महामोन मन हरण मदन मूर्त मै मंडन अमित तेज अभिकार अखय अपांज अमित बल निरपांज निरपौ निर्वय निर्जुर नृप जल थल अक्षय स्वरूप अच्छु अच्छेत अक्षय अच्छान अक्षर अद्वै स्वरूप अद्वीय अमर अभिबंधत सुर नर असुर कुल कलंक कर हीन कृपा की सागर करुणा कर करण कारण समरथ कृपा की सूरत कृत तर काल कर्म कर हीन क्रिया जय कोई न बुझे कहाँ करै कह करै कह कालन कह सुजै कंजक लैन कंबू गरीब कड़के हर कुंचर गवन कदली खुरंग कर पूर गत बिन काल दूजो कवन छपै छंद लख रूप अलेख अभय अपू अनपूत भंजन आदि प्रख अभिकार अजय अनगात भंजन निर्विकार निर्जल स्वरूप निर्द्वैक निरंजन अपंजान भंजन अनभेद अनपूत भंजन शान शाह सुंदर सुमत बड़ स्वरूप बड़ वै बखत कोटक प्रताप भवान जिम तपत तेज स्थित तखत छपै छंतौ प्रसाद चक्रत चार चक्र वै चक्रत चौ चौ कोंट चवगन कोट सूर सम तेज तेज नहीं दून चवगन कोट चंद चक पर तुल नहीं तेज विचारत व्यास परासुर ब्राह्म भेद नहीं भेद उचारत शान शाह साहिब सुघर अत प्रताप सुंदर सबल राजान राज साहिब सबल अमित तेज अक्षय अक्षर कविता प्रसाद गयो जो न जाय सो अगा कह के गाही अत छेदेव जो न जाय सो अछेद कह पछानी आ गंजो जो न जाय सो अगंज कह के जानी अत पंजो जो न जाय सो अपंज कह के मानी आ साध्यो जो न जाय सो असाध कह के साध कर छलियो जो न जाय सो अशाल कह प्रमानी आ मंत्र मै न आवै सो अपांतर कह के मान मन जंत्र मै न आवै सो अजंत्र कह के जानी है कविता प्रसाद जात मै न आवै सो अजात कह के मान जान जी अपात मै न आवै सो अपात कह बुलाई है भेद मै न आवै सो अभेद कह के पाखी अत छेद्यो जो न जाय सो अछेद कह सुनाई है खंड्यो जो न जाय सो अखंड जू को ख्याल की जय ख्याल मै न आवै गम ता को सदा खाई है जंत्र मै न आवै सो अजंत्र कह के जा पी अत ध्यान मै न आवै ता को ध्यान की जय त्याई है कविता प्रसाद शत्रतारी शत्रिपद शैल रूप शेतनाथ छौनी कर छाया बर शत्रिपद काइया विश्वनाथ विश्वंभर वेदनाथ बालाकर बाजीगर बाण तारी बंधन बताइया निवली करम दूधा तारी विद्यातार ब्रह्मचारी ध्यान को लगा वह नैक ध्यान होना पाइया राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है कविता प्रसाद जुत के जतैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मिटैया नाथ तीन लोग गाइया
काहू के तनैया है न मैया जाके पैया को, छौनी हूं के छैया छोड़ काश्यू प्रीदलाइया, साधना सदैया तूल तानी के तुजैया, धूम धार के तरैया ध्यान ताको सदा लाइया, आओ के बढ़ैया एक नाम के जपैया, और काम के करैया छोड़ और कौन त्याइया, कभी तौ प्रसाद काम को कुनिंदा कर खूबी को देहिंदा का जगाजी को गजिंदा, सुख निंदा के बताइया, चाम के चलिंदा का काम ते बचिंदा, शाह छात्र छौनी के छलिंदा, सोधिहंदा कह मनाइया, जर को जनिंदा जान मान को जनिंदा, जोत जेब को जनिंद जगिंदा, जान मान जान गाइया, दोख को दलिंदा, दीन दान सुधिहंदा, दोख दुर्जन दलिंदा, त्याय दूजो कौन त्याईया, कविता प्रसाद सालत सिहिंदा, सिद्धताई को सदिंदा, अंग अंग में अविंदा, एक एको नाथ जानिया, कालख कटिंदा गुरा सान को खुनिंदा, गर्भ गा पल गलिंदा गोल गंजक मखानिया, गालब गरिंदा जीत तेज के दिहिंदा, चित्र चाम के चलिंदा, छोड़ और कौन आनिया, सतता दिहिंदा सतताई को सुखिंदा, कर्म काम को कुनिंदा छोड़ दूजा कौन मानिए, कविता प्रसाद जोत को जगिंदा, जंग जा फ्री देहंदा, मित्र मारी के मलिंदा, वह कुनिंदा कह बखानिया, पालक पुनिंदा परम पारसी प्रगिंदा, रंग राग के सुनिंदा पै अनिंदा तेज मानिया, जाप के जपिंदा खैर खुबी के देहिंदा, कुन माफ के कुनिंदा है अपे जरूर उठानिया, आर जा देहिंदा रंग राग के बढ़िंदा, दोष्ट द्रोह के दलिंदा छोड़ दूजो पौनती आया, कविता प्रसाद आत्मा प्रधान जा सिद्धता स्वरूपता बुद्धता विभूतता जा सिद्धता स्वभाव है, राग पीना रंग ताहे रूप ही सुना रेख जाहे, अंग पी सुरंग ताहे रंग के स्वभाव है, चित्र सो विचित्र है परमता पवित्र है, सुमित्र उनके मित्र है विभूत को भाव है, देवन के देव है के शाहन को शाह है, के राजन को राज है, के रावण को राव है।

चौबीस अवतार चौपाई अब चौबीस उचरों अवतारा जय पितृ का लखा अखारा सुनियो संत सबै चितलाई वर्णत श्याम जथा मद भाई चौपाई जब जब होत अरिष्ट पारा तब तब देह तरत अवतारा काल सबन को पेख तमासा अंत है काल करत है नासा चौपाई जी काल सबन का करत पसारा अंत काल तो भोख खापन हारा अपन रूप नंतर तरी आप मद लीन पुन कर रही चौपाई इन मैं श्रिष्ठ दस अवतारा जिन मैं रमिया राम हमारा अनंत चतुर्दश गण अवतारो कहो जो तिन तिन किए कारो चौपाई काल आपनो नाम छिपाई अवरण के सिर दैवरी आई आप आपन रहत निरालम जगते जान लय जाना मैं तपते चौबी आप रचे आपे कलकाए अवनन कहते मूंढताए आप निरालम रहा न पाया ताते नाम बेअंत कहाया जाओ भई जो चौबीस अवतार कहे तिन भी तुम प्रभ तनक न पाए सभी जग भरमे परवर आयंग ताते नाम बेअंत कहायंग जाओ भई सभी चलत न आप चलाया ताते छलिया आप कहाया संतन दुखी निरख अकुलावे दीन बंद ताते खैलावे चौपी अंत करत सब जग को काला नाम काल तांते जगडाला समय संत पर होत सुहाई तांते संख्या संत सुनाए जाओ पई दीर्घ दीन पर होत दियारा दीन बंध हम तबै बिचारा संतरमन करना रस तारी करना निध जग तबै बिचार ही जाओ पई संकट हरण साधवन सदा संकट हरण नाम भजो तदा दुख दाहत संतन के आयोग दुख दान प्रभ तदन कहायो जाओ पई राह अनंत अंत नि पायो जाते नाम बेअंत कहायो जगमो रूप सवन के तरता जाते नाम बखत नियत करता चौपी किनु कहूँ ना ताई लखायो ऐ कर नाम लख कहायो जोन जगत में कबू ना आया जाते सुबह जोन बताया चौपी ब्रह्मा दिख सभी पच हारे विषण महेश्वर कौन बिचारे चंद सूरजिन करे बिचारा तांते जनियत है करतारा चौपी सदा पेख पेखी रही रही तांते जगत पेखी कही ही अलख रूप किन्हू ने जाना तय कर जात अलेख बखाना चौपी रूप अनूप स्वरूप अपारा पेख अपेख सवन ते न्यारा दायक सुबह जाजक सब ते जान लयो करता हम तपते चौपी लगन सगन ते रह निरलम है यकता जगत मैं मालम जंत्र मंत्र अंतर निछाया पेख करत किन्हू ने पाया चौपी जग अपन अपन उड़ जाना पार ब्रह्म का होना पछाना एक मड़ियन कबरन वे जाही दुवन मैं परमेश्वर नाई चौपी ए दु मुँह बाद मुपजे इन ते नाद निराले बजे जानते छूट गयो ब्रह्म मुक्का तय आगे हिंदू क्या तुरका चौपाई एक तस्बी कमाला तरही एक कुरान पुराण उचरही करत विरुद्ध गए मरमूड़ा प्रभ को रंग ना लागा कूड़ा जाओ भई जो जो रंग एक ही राजे ते लोक लाज तनाजे आद पुरख जिन एक पिछाना दुखी द्वितीया भाव न मन में आना जाओ भई जे जे भाव द्वितीया में राजे ते मीत मिलन ते बाचे एक पुरख जिन नैक पिछाना तिन ही परम तत् कह जाना जाओ भई जो कि सन्यासी है जे ते मुंडिया मुसलमान गण ते पेक तरे लूट संसारा शब्द साथ जय नाम आधारा जाओ भई पेट हेत नर डिम दिखाई डिम करे बिन भयत नाही जिन नर एक बुर कहते आयो तिन कर डिम न किसी दिखायो जाओ भई डिम करे बिन हाथ न आवे कहू न काहू चीज निभावे जो ए पेट न काहू होता रा ब्रह्म का हुकु कहता जाओ भई जिन प्रभ एक बैठ है रायो तिन कर डिम न किस दिखायो चीज दयो न सिर नर दीना रंग समान दे कर जीना जाओ भई कान छेद जोगी कह वायो अत प्रपंच कर बनय सदायो एक नाम को तत् न लयो मन को पयो न ग्रह को पयो चौपी कहाँ लगे कब कथ विचारा रसना एक न पइये तुम्हारा जय बा कोट कोट हो तरह गुण समुद्र तुवै पार ना पर चौपाई प्रथम काल सब जप को ताता ताते पयो तेज बखिया ता सुवी भवानी नाम कहाई जिन सिगरी है श्रेष्ठ पाई जाओ भई प्रथम है ओंकार तिनका सो तुन पूर जगत मोरा तांते जगत भयो विस्तारा परख प्रकृति दू जब दू बिचारा जाओ भई जगत भयो तांते सब जनिया चार खान अर कार प्रकट बखानिया ता सकत इति नहीं वर्ण सुनाऊ पिन पिन कर नाम बताओ जाओ भई बलि अबलि दो बजाए उच नीच कर पिन दिखाए बाप तर काल बलि बलवाना अपे रूप तरत पयो नाना जाओ भई भिन्न भिन्न जिम दे तराए तिम तिम कर अवतार कहाए परम रूप जो एक कहायो अंत सबोत है मन मिलायो जाओ भई जितक जी जगत के जीव बखानो एक ज्योत सभी मैं जानो काल रूप भगवान पनैबो ता मैं लीन जगत सब वै बो चौपाई जो किच दिष्ट गोचर आवता कहो मन माया ठहरावत एक है आप सबन मुँह व्यापा सब कोई भिन्न भिन्न करता ब जाओ भई सभी मैं रम रहे हो लेखा मांगत भिन्न भिन्न ते लेखा जे नर एक वै ठहरा जो तेन कर तेन नतेन ही परम तत् कह पायो चौपी एक है रूप अनुसरूपा रंग पियो रावत गुंफूपा भिन्न भिन्न सबन उड़ जायो सब ते जुदन किनु पायो जाओ भई भिन्न भिन्न सब हूँ उपजायो भिन्न भिन्न कर तेनु खपायो आप किसु को दोष न लीना और सिर बुरियाई दीना जाओ भई संका सुरदान उपन पायो बहु विध कह जाको दुख दयो मच्छ अवतार आप पुनतरा आपन जाप आप मुकरा चौपी प्रथम तुच्छ मीन बबतरा बैठ समुद्र चक चोरन करा
पुन पुन करत भयो विस्तारा संखा सुर तप गो विचारा भुजंग प्रयात छंदा तबै गोप कर ज्यो बलि संग बीरंग धरे शस्त्र अस्त्रंग सजे लो चीरंग चर चतुर वेद पातंकियो सिंध मंदंग तरसियो अष्ट नैनंग करियो युद्ध सुदंग भुजंग प्रयात छंदा तबै संभरे दीन हे तंग दियारंग तरे लोक रोहंग कृपा के कृपालंग महा सत्र पातंग करे असत्र कातंग तरे देव सरबंग गिरे लोक सातंग भुजंग प्रयात छंदा पाए अत्र कातंग गिरे चौर चीरंग ले तछ मुछंग उठे उठे तछ तीरंग गिरे सुंड मुंडंग रणय रणंग भीम रूपंग मनो खेल पौटे हटी फाग जुबंग भुजंग प्रयात छंदा वय खगियंग खेत खंगंग सो तीरंग सुबह शस्त्र संजान सो सूर बीरंग गिरे गौर गाजी खुले हाथ बथंग नचियो रुद्र रुद्रंग नचे मच मच्छंग सावल छंद महावीर गजे सुबंग शस्त्र सजे बधे गज बगाहंग सुराव सो हुरंग उषांग सावल छंद तला टुक ढालंग जमी तेज कालंग कटा कट बाह वह जीत चाहे रसावल छंद मुखंग मुछ बंकी तमंग तेज तंकी फिर गौर गाजी नचे तुंता जी भुजंग छंद परियो रोज संखा सुरंग देख सैनंग तपे वीर बक्तरंग किए रक्त नैनंग पुजा ठोक भूपंग करियो नाद उचंग सुने गर्भणी आन के गर्भ मुचंग भुजंग लगे ठाम ठाम दमंके खुले खेत मोखक खुनी खिमंके पए क्रूर भांतंग मण कड़के नचे वीर बैताल भूतंग पड़के भुजंग करियो आयुधंग सायुधंग वीर खेतंग नचे कंत हिणंक बंधंग अचेतंग खुले खग खुनी ख्यालंग तंग भजे कातरंग सूर भजे निहंग भुजंग कटे चरम बरमंग गिरियो शस्त्र सतरंग फके पहे परे पूत भूमंग नृस्त्रंग रणंग रंग रते सभी रंग भूमंग गिरे युद्ध मदंग बलि जूम झूमंग भुजंग पयो धुंद्र जुदंग रणंग संख मच्छंग मनो दो गिरंग युद्ध जुटे सपछंग कटे माछ टुकंग पखे गृद बृदंग हसी जोगणी चौसठा सुर सुदंग भुजंग यो धार बेदंग हते संख बीरंग तजो मच्छ रूपंग सरजो सुंदर तीजंग सबै देव बांधे कियो दुष्ट ना संग टरे सर्वदानो परे जीव त्रासंग भुजंग त्रिभंगी छंद संखा सुर मारे बेद उधारे सत्र संघारे जस लीनो देवेश बुलायो राज बिठायो छत्र फिनायो सुख दीनो कोट बजे बाजे अमरे सुर गाजे शुभ कर साजे शोक हरे दै कोटक दक्षिणा क्रोर प्रदर्शना आन सो मच्छ के पाए परे एत श्री बचित नाटके मच्छ अवतार कथन संखा सुरबद है।

संकट हरण सब सिद्ध की करण चंड तारण तरन सरण लोचन विशाल है। आद जाकै आहम है अंत कुना पारावार शरण उबारण करण प्रतिपार है। असुर संघारण अनेक दुख जारण सो पतित उदाहरण छड़ाई जम जाल है। देवी बर लायक सब बुद्धि हूं की दायक सदैव बर पायक बनावे ग्रंथ हारे सवैया। आदर सुता हूं की जो तनिया मैं का सुर की मरता फुन जो इंद्र को राजे की तिवैया करता। बद सुमन सुमह दो जो जाप कह ऐ सेव करे बर को सुलह मन इच्छत सो लोक बिखह की सम तोल गरीब निवाज ना दूसर को। एत श्री देवी जी की समाप्त।

अथ देवी जुकी उस तत् कथनंग भुजंग प्रयात शानदार तुई अश्रणी शस्त्रणी आप रूपा तुई अंबिका जंब हंती अनुपा तुई अंबिका शीतला तोतला है पृथ्वी भूमा काश तै ही किया है तुई मुंड मर्दी कपरदी भवानी तुई कालका जल पा राजधानी महाजोग माया तुई ईश्वरी है तुई तेज आकाश तंबोमयी है तुई रिष्टनी पुष्टनी जोग माया तुई मोसो चौदहों लोक छाया तुई सुंभ नै सुंभ हंती पवानी तुई चौदहों लोक की जोत जानी तुई रिष्टनी पुष्टनी शस्त्रनी है तुई कष्टनी हरतनी अश्रणी है तुई जोग माया तुई बागवानी तुई अंबिका जंभा राजधानी मां जोग माया मां राजधानी पवी भावनी पूत भव्यंग पवानी चरी आचरणी खेचरणी भूपणी है मां बाणी अपनी रूपणी है महा महाभैरवी भूतनेसरी पवानी पवि पावनी पव्यंकाली कृपाणी जया अजया सिंगला पिंगला है शिवा शीतला मंगला तोतला है तुई अक्षरा पछरा बुध बिरदया तुई भैरवी भूपणी सुध सिद्धिया महा बाणी अश्रणी शस्त्रधारी तुई तीर तलवार काती कटारी तुई राशि सातकी तामसी है तुई कालका बृदनी औजुआ तुई देव दानवी देवनी जाचनी है तुई किन्द्रनी मछनी कछनी है तुई देव ते शेषनी दानवेसा त्रै बृष्टनी है तुही अस्त्र पेशा तुही राज राजेश्वरी जोग माया महा मोह सो चौदहों लोक छाया तुही ब्राह्मी वैष्णवी श्री पवानी तुही बासवी ईश्वरी कर्तिकयानी तुही अंबिका दुष्टहा मुंडमाली तुही कष्ट हंती कृपा कृपाली तुम्हें ब्राह्मणी हुए हिरंगनाश मारियो हिरंगनाश संग सिंगणी हुए पिछारियो तुम्हें बावनी हुए तिनों लोक मान पे तुम्हें देवदानों की जाच थापे तुम्हें राम हुए कह दशा ग्रीव खंडियो तुम्हें कंस तुम्हें कृष्ण हुए कंस केसी बिहंडियो तुम्हें कालका जालपा तुम्हें कालपा हुए बड़ा लाच कायो तुम्हें सुंभ नै सुंभ दानों को पायो दोहरा दास जानकर दास पर की जय कृपा पार आप हाथ दे राख मय मन कर्म वचन विचार जाओ भाई मैं ना गणेश है प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हुने त्याऊं कान सुने पहचान ना तिन सो निवलागी मोरी पग नि सो मां काल रखवार हमारो मां लोभ मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बां गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रतवरिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देख तेख जग मैं दो चलै राख आप मोय अवर ना दलै तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सबका तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दाय हाथ बारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम धरो भगवत को ध्याना बाहर करो कविता बिंदनाना कृष्ण जथा मत चरित उपचारो चूक होए कबले हो सुधारो एत श्री देवी।

सवैया शानदार पाप समूह विनाशन काओ कल की अवतार कहावेंगे तुरकाश तुरंग सपाश बड़ो कड़ काल कृपान कपावेंगे नेक से जिम के हर पर्वत ते तत्सोभ दिवालय पावेंगे पल भाग पया संबल के हर जू हर मंदिर आवेंगे रूप अनूप स्वरूप महालख देव अदेव लजावेंगे हर मार सुधार कै टार कनो बवरो कल धर्म चलावेंगे सब साथ उबाल लह कर जाए दुख आंच न लागन पावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे दानव मार अपार बड़े रणजीत निशान बजावेंगे खलटार हजार करोड़ किते कल के कल कृत बढ़ावेंगे प्रकट है जित ही ति धर्म दशा लख पापन पुंज बरावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे छीन महादिज दीन दशा लख दीन दयाल रसावेंगे खग काढ़ अभंग निसंग हठी रण रंग तुरंग नचावेंगे रिवजीत अजीत अभीत बड़े अवनी पे सुबह जस गावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे से सुरेश महेश गणेश निशेष भले जस गावेंगे गणपूत परेत पिसाज परी जय सद ननद सुनावेंगे नर नारद तुम्बर किन्नर जच सो बीन प्रबीन बजावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे ताल मृदंग मुचंग उपंग सुरंग से नाथ सुनावेंगे डफ बार तरंग रबाब धुरी रण रंग असंख बजावेंगे गान दुंधब ढोलन घोर घनी सुन सत्र सबै मुरछावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे तीर तुफंग कमान सुरंग दुरंग निखंग सुहावेंगे बरछी अर बैरक बाण तुजा पट बात लगे फहरावेंगे गण जच पुजंग सो किन्नर सिद्ध प्रसिद्ध सबै जसगावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे कांच कृपान कम कटारी कमान सुरंग निखंग छकावेंगे बरछी अर टहाल गदा परसुकल सूरत सूल प्रमावेंगे अध क्रुद्ध तुफैरण मूर्धन मोह सर ओग प्र ओग चलावेंगे पल भाग पया ए संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे तेज प्रचंड अखंड मां छब दुर्जन देख परावेंगे जिम पौन प्रचंड बह पतुआ सब आपन ही उड़ जावेंगे बढ़ है जित ही ती धर्म दिशा ओं पापन ढूंढत पावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे छूटत बान कमानन के रण छाड़ पटवा पहरावेंगे गण वीर पिताल कराल प्रभा रण मूर्धन मध सुहावेंगे गण सिद्ध प्रसिद्ध समृद्ध सनै कर उचाय कै कृत सुनावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे रूप अनूप सरूप महा अंग देख अनंग लजावेंगे पव भूत पविक पवान सदा सब ठार सब ठहरावेंगे पव पार पार निवारण को कल की अवतार कहावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे ऊम को पहार उतार बड़े बड़े आश बड़ी छपावेंगे खल टार जुजार बरियार हटी कान को खन जू कहरावेंगे कल नारद भूत पिसाज परी जय पत्र तरत्र सुनावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे चार कृपान जुझार बड़े रण मध महा छपावेंगे तार लोथ पलोथ बिथार कणी कान की घाट जू कहरावेंगे चतुरानन रोद्र चरार चढ़जे जय साध ननद सुनावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे तार प्रमाण उचान तुजा लख देव अदेव तरसावेंगे गल की गज गाह गदा बरसी गय पान कृपान प्रमावेंगे गज पा जग पाप समूह विनाशन कौ कल की कल कल की कल धर्म चलावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे पान कृपान अजान पुजारण रूपमान दिखावेंगे प्रतमान सुजान अप्रपान प्रभा लख व्योम विवान लजावेंगे गण भूत पिसाच प्रेत परी मिल जीत का गीत गवावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे बाजत डंक तंक सवै रण रंग तुरंग नचावेंगे कस बान कमान गदा बरछी कल सूर ते सूल प्रमावेंगे गण देव अदेव पिसाच परी रण देख सबै रह सावेंगे पल भाग पया ए संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे।
ਸਿਰ ਖਿੰਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾ ਵਜੇ ਨਾਦ ਸੁਰੰਗੀ ਧੱਗਾ ਘੋਰੀਆਂ ਨੱਚੇ ਜਾਣ ਫਿਰੰਗੀ ਵਜੇ ਘੁੰਗਰੂ ਗਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਿਖੰਗੀ ਝੂਰਨ ਬੈਰਖਾਂ ਸਾਵਣ ਜਾਣ ਉਮੰਗੀ ਕਟਾਂਡ ਰਾਵਣੀ ਬਾਣੇ ਅੰਗ ਭਜਾਂਗੀ ਸਾਵਲ ਸੋਹਣੇ ਤਰੈ ਸਹਿ ਹੱਥ ਪਤੰਗੀ ਖੰਡਾ ਧੂਹਿਆਂ ਭਾ ਤਾਜੀ ਭੌਰ ਪਿਲੰਗੀ ਛਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਪੰਗੀ ਜਾਣ ਪਿੜੰਗੀ ਨੱਚੇ ਦਾਇਰੀ ਵਜੇ ਨਾਥ ਸੁਰੰਗੀ ਅਣੀਆਂ ਜੁੱਟੀਆਂ ਪੈਰੇ ਧਾਰ ਪਵੰਗੀ ਫੌਜਾਂ ਚੀਰ ਕੈ ਉੱਠੈ ਛੈਲ ਛਲੰਗੀ

मोहिनी छंद जय जय देवी भवानी पवखंडी दुर्गा सर्वाणी केसरिया बाही कौमारी पैखंडी भैरव उद्धारी अकलंका अत्रि शतराणी मोहिनी अंग सर्वंग लोकानी रक्तांगी सावी सावित्री परमेश्वरी परमा पावित्री तोतलिया जय वा कौमारी पवर्णी हरणी उद्धारी रूपा पूपा बुद्धाणी जय जम्पै सुदंग सिद्धाणी जगतारी भारी भगतायंग करतारी पारी मुक्तायंग सुंदर गोफनिया गुरजाणी दे भरणी हरणी भामाणी पिम भरिया जच्छंग सर्वाणी गंधर्वी सिद्धंग चाराणी अकलंग स्वरूपंग निर्मलियंग कण मध्य मानो चंचलियंग अस्पाणंग माणंग लोकायंग सुख करणी हरणी शोकायंग दुष्ट हंति संतंग उद्धारी अनछेदा भेदा कौमारी आनंदी गिरजा कौमारी अनछेदा भेदा उद्धारी अनगंज अपंजा खंकाली मृग नैणी रूपंग उज्जाली रक्तांगी रुद्रा पिंगाची कड़कच्छी स्वच्छी उल्लासी रक्ताली रामा तौलाली मोहनी आमाई खंकाली जगदानी भाई पावाणी पवखंडी दुर्गा देवाणी रुद्रांगी रुद्रा रक्तांगी परमेश्वरी पमाई धर्मांगी मैं खासुर धरणी मैं पाली चिछरासुर हंती खंकाली अस्पाणी माणी देवाणी जयदाती दुर्गा पावाणी पिंगाछी परमा पावित्री सावित्री संध्या गायत्री पै हरणी पीमा पामाणी जय देवी दुर्गा देवाणी दुर्गा दलग्राही देवाणी पै खंडी सर्वंग भूताणी जय चंडी मुंडी सत्रहंत्री जय दाता माता जय अंती संसरणी तरणी लोकाणी पिंग भरणी तरणी दैताणी के करणी कारण लोकाणी दुखरणी देवंग इंद्राणी सोम बहंती जयंती खंकाली कंकड़िया रूपा रक्ताली तोतलिया जेवा हिंसिंधुलिया हिंगुलिया माता पिंगुलिया चंचली चित्रा चित्रांगी पिंपरिया पीमा सर्वांगी बदपूपा पूपा जुजवाली अकलंका माई निर्माली उछलै लंकुड़िया छतराला पिंपरिया पैरो पावाला जय दाता माता जय दाणी लोकेशी दुर्गा पामाणी सम्मोही सर्वंग जगतायंग निद्रा क्षुदा पिपासायंग जय कालंग रात्रि सक्राणी उद्धारी भारी भगताणी जय माही गाई बेदाणी अनछिद अपेदा खेदाणी पै हरणी सर्वंग संताणी जय दाता माता कृपाणी अचकड़ा छंद अंबका तोतला शीतला साकणी सिंधरी सोप्रभा सोप्रमा डाकणी सावजा संभरी सिंधुला दुखहरी सुमिला संभिला सोप्रभा दुधरी भावना पैहरी भूतली पैहरा टाकणी झाकणी साकणी सिंधुला दुधरा दुर्मुखा दुर्कटा दुधरी कंपिला जंपिला हिंगुला पैहरी चित्रणी चापणी चारणी चछरा हिंगुला पिंगुला गंधर्वा जछणी बरमणी चरमणी परघणी प्रासणी खड़गणी गड़गणी सैतणी प्रसापणी भीमड़ा समदड़ा हिंगुला मारतकी सोप्रभा अच्छिदा अधरा मारतकी गिंगली हिंगली ठिंगली पिंगला चिकनी चरकटा चरपटा चामटा अचकड़ा तव प्रसाद अच्छिदा पिदा असिता अधरी अकटा अखटा अछटा दुधरी अंजनी अंबका अश्री तारणी अभरंग अधरा जगत उधारणी अंजनी गंजनी सक साकड़ी शीतला सिंधरी सोप्रभा सामला तोतला संभरी गंभरी अंभरी अकटा दुसला दुबिखरका दुर्कटा अमिटा पैरवी पैहरी पूचरा भावनी त्रिकुटा चरपटा चावड़ा मानवी जोबना जय करी जम्भरी जालपा तोतला तुंदला दंतली कालका परमणा निप्रभा पावना पैहरी बरबुदा दात्रणी शस्त्रणी छय करी दुर्कटा दुभ्रता दुधरा दुर्मदी अत्रटा अछटा अजटा अभिदे तंतला अंतला संतला सामजा भीमड़ा पैहरी भूतला भावजा डाकणी साकणी झाकणी काकड़ा किंकड़ी कालका जालबा जय मृड़ा ठिंगुला हिंगुला पिंगला प्रासणी शस्त्रणी अस्कनी सुरुणी सासणी कन्निका अन्निका तन्निका तालरी रक्त का सकत का भगत का जय करी चिंगड़ा पिंगड़ा जिंगड़ा जालपा जोगणी भोगणी रोग हरी कालका चंचला चावड़ा चाचरा चित्रता तंतरी पिंबरी जठनी छिंचला दंतुला दामणी दुर्कटा दुभ्रमा क्षुद्रता निद्रका निर्भ्रमा निर्घ्रमा कदरका चूड़का चारका चापणी चित्रणी चावड़ा चिंपला चापणी बिसन पाता प्रसाद पर ज
कैसे के पायन प्रभा उचारो जानक निमट निपट अघट अमृत सम संपट सुबट विचारो मन मत करे चरण कमलन पर हुए मन मत गुंजारो मात्र शब्द शब्द वितरण कोल साधु कुली उधारो विषण पद काफी ता दिन देह सफल कर जानो जा दिन जगत मात पर फुलित वह देह विजय प्रदानो ता दिन शस्त्र अस्त्र कट बांधो चंदन चित्र लगाऊ जा कहो नेत निगम कह बोलत तास सो बर जपाऊ सोरठ तव प्रसाद कथता अंतरजामी अभय भवानी अति निरख प्रेम पारस को चित की वृथा पछानी आपन भक्त ज्ञान पव खंडन अभय स्वरूप दिखायो चक्र रह पेख मुंजन स्वर अजर अमर पद पायो सोबत बामे पान कृपाणी जातर जाछ किन्नर असुरन की सब की क्रिया हिरानी जातन मद की टब कव खंडियो सुमन सुम सिंगारे सोई कृपान निदान लगे जगदान रहो हमारे जातन बिड़ा लाच चथरा दिख खंडन खंड उड़ाए धूली करण धूम लोचन के मासन ग्रेदर जाए राम रसूल कृष्ण बिशना दिख काल करवाले कूटे कोट उपाय ताए सब धाके बेन तय भजन न छूटे सूई तव प्रसाद कथदा सोबत पान कृपान उजारी जातन इंद्र कोट कई खंडे बिशन क्रोर त्रिपुरारी जा कहो राम उचर मुन जन सब सेव ध्यान लगाए तस तुम राम कृष्ण कई कोटक बार उपाय मिटाए अनभ रूप स्वरूप अगंजन कव कवन बिद गईया जय बसर रटत गुण थाकी कब जैवे कब तैया भूमका अस्पताल जवन कर चौदह खंड बिहंडे जगमत ज्योत होत भूतल मै खंडन अभ्रह मंडे सोरठा विशन पद जय जय रूप अरेख अपार जास पाए प्रमाए जय तय भीम को शिव दया द्वार जास पाए लग्यो निशेष है कार मा तन एक देव ते संस पे भाग जास पाए अनेक किशन राम पाए किते पनकाल पाए बिहान काल को अनकाल कह अकलंक मूर्त मान जास पाए पहो सब जग जास पाए बिलान ताय तय अभिचार जड़ करतार का इना जान नार हर जान का इना लेत तय परोस

एक ओंकार श्री वाहगुरु जी की फतेह है। श्री भगवती जी सहाय अथ श्री शस्त्र नाम माला पुराण लिखी अते पातशाही दसवीं दोहराय सांग सरवी साहिब अरती तुरत दरबार सत्रां तक अवचांत कर करिए रछ मार दोहराय अस कृपान तारा तरी साहब सूल जमदाड़ कब चांदक सतरांत कर तेग तीर तरबाड़ अस कृपान खंडो खड़क तबक तबर अरतीर साहब सरोई सह थी यह मारे पीरा तीर तुई सह थी तुई तबर तरबार नाम त्योहार हो जो पै पै सिंध पापार काल तुई काली तुई ते कर तीर तुई निशानी जीत की आज तुई जगबीर तुई सूल सह थी तबर तू निखांगा करबार तुई कटारी सेल सब तुम्हें करत कृपान शस्त्र अत तुम्ही सिपर तुम्ही कावत निखांगा कब चांतक तुम्ही बने तुम व्यापक सर्वांग श्री तू सब कारण तुई तुम विद्या कुसार तुम सबको अपराज ही तुम ही लेह बार तुम ही दिन रजनी तुई तुम ही जीन उपाय कौतक हिरण के नमे तिनमो बाद बढ़ाए अस कृपान खंडो खड़क साहब तेग दरबार रच करो हमरी सदा कब चांतक दरबार तू ही कटारी दाड़ जम तू विश्वर बार तो पत पत जे लीजिए रश दान मोह जान बांक बजर विशो तुई तबर तरबार तुई कटारी सहती करिया रच मार तुम्हें गुड़ तुम्हें गदा तुम्हें तीर तुफंग दा जान मोरी सदा रच करो सरबंग छुरी करम रिप कर तुपन खंजर भुगता नाय अर्ध द्रेजक सब जगत को मोह तुम लेव बचाए प्रथम पावा बावह जग तुम ही पंथ बनाए आप तुम्हें झगड़ा करो तुम ही करो सहाय मच का जबारा तुम नावन अवतार नार सिंह बबदा तुम ही जगत को सार तुम्ही राम श्री कृष्ण तुम ही विष्ण को रूप तुम्ही प्रजा सब जगत की तुम्ही आप ही भूप तुम्ही बेपर छत्री तुम्ही रंग कर दाओ साम दाम हर दंड तुम ही भेद पा तुम शीस ती तुम्ही काया तुम तय प्राणी के प्राण तय विद्या जग बत्र बकत्र होए करे वेद बखियान बिसक पहा बान तन खागर पन सर कैबर जय नाम तीर खतंग ततार चो सदा करो ममका तैनी राले सत्र आर मृग अंतक ससमान तुम बैरन प्रथमे हरु बौरो बजय कृपान तुम पाठ सपासी परस परम सिंध की खान तेज अके राजा पय दीय तब जय प्रदान सी सत्र अर आर अस खंडो खड़ कृपान सकर सुरेसर तुम की उपगत अपनो जन जाम धार जम दाड़ा जबर जो धान तक जय नाय लूट कूट लीजत तिने जे बिन बांधे जाए बांक बज विशो विशिक ब्रह बान सब रूप जिनको तुम कृपा करी पाए जगत के पुप शास्त्र सम्रांत कर सिपरार समशेर मुक्त जाल जम के पहे जिन्हें कहो एक बेर सैफ सरोई सत्र सारंगार जय नाम सदा मारे चित बसो सदा करो मंगा एत श्री नाम माला पुराण श्री भगवती प्रथम ते आय समाप्त।

सुभय बनाए। जे पूजा असकेत की नितपत करत बनाए, तिन पर अपनो हाथ दे आस तोज लेत बचाए। चौपाई दोष्ट दोष्ट दैत कछ बात ना जानी, महाकाल तन पुन रिष्ठानी, बल अप बल अपनो ना बिचारा, गर्भठान जी बौर हंकारा, रे रे काल फूल जन जाहु, बौर आन संग्राम चाहू, एक निदान करो रण माही, कह अस तुझ कह दान मनाही, एक पावत युद्ध ना भाजा, महाराज दैतन का राजा, आंताओ गीत गगन लै गए, बात बिसकतो हट पाए, असुर अमित रण बाण चलाए, निरख खड़ग तुज काट गिराए, बीस सहांसर असुर परबाना, श्री अस तुज छाडे बिदनाना, महाकाल पुन जी मैं कोपा, तनुख टंकोर बहुर रन रूपा, एक बाण ते तुझे गिरायो, द्वितीया सत्र को शीस उड़ायो, दोहों बिसिख कर द्वै रथ चाकर काट दए, छिन मैं छिन एक मैं बकरा, चारे बाण चार हूं बाजा, मार दए सब जके राजा, बहुर असुर का काट समाथा, श्री अस के जगत के नाथा, द्वितीय बाण सो दो वर कर काट दयो, अस तुज नरनाहर, पुनराक्षस का काटा सीसा, श्री अस के जगत के ईसा, पहुपन वृष्ट गगन ते पाई, सभिन आन बधाई दई, धान्य तान्य लोगन के राजा, दुष्टन दाह गरीब निवाजा, अखल भवन के सिरजन हारे, दास जान मोहले हो बारे, कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दोष सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिया, सब बैरण का आज संघरिया, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याहूं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सत्र हमारे मारिया, आप हाथ दै मुझे बरिया, मरण काल का त्रास निबरिया, ऊ जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जिजु करिया और अच्छा, राख लेओ मोय राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव जीव अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दै जक्षन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मुंबत कियो, काट काट के अंतर की जानता, पले बुरे की पीर पछान, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान, जब उद करक करा करता रा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आ करक करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं, जे ते बदन श्रेष्ठ सब धार है, आप

कर पाहन अनमानत महा मूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कह कहत सदा सेवा निरंकार का चीनत न पेहवा आप आपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कह बित सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंग भयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उद्भुत खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सेमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंभव आद जुगात स्वरूप स्वयं भाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवद उत्पाता सकल मलेच्छ करो रण कहता जे अस तोजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत भय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार तिया है ताके काल निकट नहीं आय है रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध करमु सब होई दुष्ट छाछ बै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो का दा

अर्ध सैस फोन तीन गही जय भादव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रौ ग्रंथ सुधारा संबत सत्रह सैस पणि जय अर्ध सैस फुन तीन कही जय भादव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रौ ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखे आने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त